0: 25 years ago, Prime Minister Narendra Modi took charge as the Gujarat's then Chief Minister. What followed later was a rapid industrial expansion, and pharmaceuticals became one of the state's most powerful growth engines. Today, Gujarat's healthcare story is no longer limited to making only medicines. It has become about pharma, bulk drugs, biotechnology, medical devices, and specialized hospitals. Gujarat today is building something much bigger, an entire healthcare ecosystem.
1: India is the largest provider of generic drugs globally and is renowned for its affordable vaccines and high-quality medicines. Over the years, the Indian pharmaceutical industry has evolved into a vibrant sector, currently the third largest in the world by volume. If one looks at India's pharmaceutical growth story, one name comes to the top, and that is Gujarat. From bustling industrial zones to world-class manufacturing plants, Gujarat has earned a reputation as India's pharmaceutical powerhouse. Gujarat is home to more than 3,300 pharmaceutical manufacturing units spread across major industrial clusters like Ahmedabad, Vadodara, Vapi, Bharuch and Ankleshwar. Historical industry data puts Gujarat's contribution at around 30-35% of India's pharma sector turnover and around 28% of pharmaceutical exports. But the strength of Gujarat's pharma sector goes beyond the number of factories. Over the years, an entire ecosystem has grown around them, from suppliers and laboratories to packaging, logistics and skilled manpower. That ecosystem has helped companies manufacture at scale and reach international markets. And one such company is Relax Biotech. Relax Biotech began operations in Vadodara, Gujarat in 2015. Today, it manufactures around 50 crore or 500 million medicines every year. The company exports to several African countries and records annual revenue of more than 75 crore rupees or $7.88 million. Its growth reflects the wider ecosystem that has developed around Gujarat's pharmaceutical industry.
2: अपने 25 साल की बात करें तो जर्नी की बात करें तो जो मार्केट भारत में था वो विदेश का भी था और भारत का भी था तो दोनों को कैटर करने की क्षमता जो कोई रखता था तो वो भारत ही था और उसमें जो बढ़ोतरी हुई उसका मेन रीज़न ये है गवर्नमेंट के द्वारा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी फिर लाइसेंसिंग फैसिलिटी और स्किल्ड मेन पावर और लेबर की जो अपनी पूर्तता है वो समय समय पे हमें मिलती रहती है। आप बड़ौदा की बात करें या गुजरात की बात करें तो बड़ौदा में गुजरात में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में गवर्नमेंट ने पहले दिन से फोकस किया था और इंडस्ट्री को उसके कारण जो भी सपोर्ट मिला है तो वो अपने को ये बेनिफिट आज की तारीख में भी मिल रहा है।
1: गुजरात हेल्थ केयर स्टोरी इज नो लॉन्गर ओनली अबाउट व्हाट कम्स आउट ऑफ अ फैक्ट्री। द ट्रांसफॉर्मेशन इज इंक्रीजिंगली विजिबल इनसाइड हॉस्पिटल्स। Across cities such as Ahmedabad, Vadodara and Surat, hospitals have expanded their tech infrastructure and capabilities, from basic healthcare to advanced diagnostics, specialized surgery and technology-driven treatment. That means making fewer journeys outside Gujarat for medical treatment.
3: आप 25 साल पहले का 20-25 साल पहले के आप स्टोरी देखोगे तो हेल्थकेयर सिस्टम की पेशेंट को ट्रीटमेंट एक ही जगह पे नहीं मिलती थी। देर आर मल्टीपल ऑप्शंस उनको सिलेक्ट करना पड़ता था। अगर उनको हार्ट सर्जरी भी करनी थी या फिर कोई बड़ा सर्जरी का कोई बदलाव था तो उनको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना पड़ता था। जो अभी का जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें आप AI बेस्ड और रोबोटिक सर्जरी और कैप्सूल एंडोस्कोपी तक की भी ट्रीटमेंट अवेलेबल हो गई है। अब एक ही प्लेस पे आपको ट्रांसप्लांट सर्जरी भी हम कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। एक ही जगह पे एक ही सिटी विदिन अ सिटी आपको हर फैसिलिटी मिल रही है। पेशेंट को एक ही जगह पे सब इन्वेस्टिगेशंस

0: और सब उसका डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट भी अवेलेबल हो गया है।
1: One doctor who has witnessed this transformation firsthand is Dr. Tarang Sharma. Dr. Sharma has been treating patients since 2008, giving him nearly two decades of experience in the field. What was once a system with limited specialized options is now a much wider network of hospitals, diagnostics, and treatment facilities. For doctors, it has meant more technology, more specialized capabilities, and increasingly, the ability to treat patients closer to where they live.
2: पहले का जो एरा था और अभी का जो है उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस आए हुए हैं। लाइक पहले को एक सिटी से लेकर दूसरे सिटी तक जाना पड़ता था, अब क्या है कि अपने ही सेंटर में, अपने ही जिले में या डिस्ट्रिक्ट में या फिर तालुका प्लेसेस पे भी वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो रही है। पहले उतनी मेडिकल कॉलेज नहीं थी, पहले इतने PHC CHC सेंटर नहीं थे, आज आप देखें तो वो PHC CHC सेंटर पे भी अच्छे से अच्छी सारवार ले सकते हैं। जो अपनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर और एडवांस टेक्नोलॉजी अपना रही है, तो पेशेंट के लिए बहुत सारा बेनिफिट हुआ है कि वो अपने नियर बाय एरिया में ही ट्रीटमेंट ले सकते हैं। बात करें एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, स्किल डेवलपमेंट ऑफ HR मैन पावर, वो सब बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ किया हुआ है। हम बात करें अब के एरा में टेलीमेडिसिन, जो हमने कोविड में भी देखा और आज भी देख रहे हैं कि हम यहाँ से लेके बड़ौदा, हम अभी बड़ौदा में है तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई सभी जगह पे टेलीमेडिसिन से डॉक्टर से डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते थे।
1: The transformation is also visible inside the operating room. Gujarat is revolutionizing healthcare with robotic surgeries, ensuring greater precision, quicker recovery and fewer complications. Cath labs have also enabled advanced cardiac interventions. Once limited to a few hospitals, these advanced procedures are now accessible to the public. Gujarat is now looking beyond conventional healthcare setup. The next opportunity lies at the intersection of pharmaceuticals, biotechnology and technology. Artificial intelligence, robotics, medical devices, advanced diagnostics, digital health, research. The ambition is to move from manufacturing healthcare products to developing technologies that can shape healthcare itself. The focus is increasingly on biotechnology, medical devices, innovation and research, alongside the state's existing pharmaceutical base. The challenge now is to bring these pieces together and create a deeper ecosystem for healthcare innovation.
3: इसका सबसे जरूरी जो aspect है वो है कि skilled labor चाहिए। तो वो स्किल लेबर प्रोवाइड, तो बड़ौदा के अंदर ही चार बड़ी यूनिवर्सिटी आज की तारीख में है और जिसके अंदर फार्मास्यूटिकल के लिए जो भी बी फार्म के कोर्सेस है वो चलते हैं और हमें यहाँ से लोकली भी एजुकेशन के हिसाब से मेन पावर मिल रहा है। तो ये एक सपोर्टिंग, सबसे बड़ा सपोर्ट है। साथ में गवर्नमेंट हमें इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल जोन में जो भी बेसिक सुविधा है वो हमें सिंगल विंडो से देने को ट्राई कर रही है, जिसके कारण गुजरात की जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री थी उसने अपने एक्सपांशन को भी किया और दूसरी जो बाहर की कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है या गुजरात के बाहर की है, वो भी कंपनी इधर आके यहाँ पर अपना यूनिट अलग से करके प्रोडक्शन में बढ़ोतरी कर रही है।
1: फॉर 25 years, गुजरात बिल्ड स्केल, फर्स्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन, देन इन इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल्स एंड स्पेशलाइज्ड केयर। नाउ द एंबिशन इज टू बिल्ड व्हाट कम्स नेक्स्ट, an ecosystem where medicines, medical devices, biotech, data and technology all come together. The test will be whether Gujarat can turn that scale into innovation and make healthcare not just more advanced, but more accessible and affordable for one and all.
4: Because the story may not just be about what the state makes, but about what it can invent, develop and take to the world. Quick video journalist Siddesh Sudhisha reporting from Vadodara, Gujarat for Beyond World with One.

अब पूरी पिक्चर देख लो. लोन ऑप्शंस बिग, सेविंग्स और एफडी पे इंटरेस्ट बिग, ब्रांच नेटवर्क बिग. अगर स्मॉल होता तो मैं साइड में होता. और जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस.

0: गाइस मेरा तीसरा स्टोर. अब एक्सपेंशन के लिए ना एक बैंक चाहिए. एनी सजेशंस? जीवन स्मॉल फाइनेंस मैन. स्मॉल
1: अब पूरी पिक्चर देख लो. लोन ऑप्शंस बिग, सेविंग्स और एफडी पे इंटरेस्ट बिग, ब्रांच नेटवर्क बिग. अगर स्मॉल होता तो मैं साइड में होता. और जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस.

0: गाइस, मेरा तीसरा स्टोर। अब एक्सपेंशन के लिए ना एक बैंक चाहिए। एनी सजेशंस? जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल
1: स्मॉल,
2: आप पूरी पिक्चर देख लो।
3: लोन ऑप्शंस बिग,
4: सेविंग्स और एफडी पे इंटरेस्ट बिग,
5: ब्रांच नेटवर्क बिग।
6: अगर स्मॉल होता तो मैं एसआर में होता।
7: और जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस।
8: The world is changing. The headlines are shifting. The future is being written every day. From around the continents, Asia and India, WEON brings you the stories that shape our world. Grounded, geopolitical, global. WEON, world is one.
0: Maddie, I need to open a savings account.
1: Arey, Ujjivan Small Finance Bank mein khol lo.
0: Small bank?
1: Small.

0: यार लोन भूल गया मैरी
1: इट्स जस्ट अ गुड बैंक ना
2: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
0: स्मॉल फाइनेंस बैंक
2: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन कार लोन टू व्हीलर लोन
3: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
4: उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस
5: द वर्ल्ड इज चेंजिंग द हेडलाइंस आर शिफ्टिंग द फ्यूचर इज बीइंग रिटन एवरी डे From around the continents, Asia and India, WEON brings you the stories that shape our world. Grounded, geopolitical, global. WEON. World is one.
6: Maddie, I need to open a savings account.
2: Arey, Ujjivan Small Finance Bank ma kholo.
6: Small bank?
2: Small. Privilege savings account, Garima savings account, Maxima business, Edge current account, business, Maxima business, Privilege, RD, everything. There's nothing small about them.
6: Okay.
4: Oh, Jeevan, nothing small about us.

0: यार लोन भूल गया मैरी
1: सो जस्ट अ गुड बैंक ना
2: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
0: स्मॉल फाइनेंस बैंक
2: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन कार लोन टू व्हीलर लोन
3: देयर्स नथिंग स्मॉल अबाउट
4: उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस
5: द वर्ल्ड इज चेंजिंग द हेडलाइंस आर शिफ्टिंग द फ्यूचर इज बीइंग रिटन एवरी डे From around the continents, Asia and India, WEON brings you the stories that shape our world. Grounded, geopolitical, global. WEON. World is one.
6: Maddy, I need to open a savings account.
2: Arey, Ujjivan Small Finance Bank ma khollo.
6: Small bank?
2: Small. Privilege savings account, Garima savings account, Maxima business, Edge current account, business, Maxima business, Privilege, RD, everything. There's nothing small about them.
6: Okay.
4: Ujjivan, nothing small about us.

0: गाइस, मेरा तीसरा स्टोर. अब एक्सपेंशन के लिए ना एक बैंक चाहिए. एनी सजेशंस?
1: जीवन स्मॉल फाइनेंस मैन.
0: स्मॉल
2: स्मॉल, अब पूरी पिक्चर देख लो. लोन ऑप्शंस बिग, सेविंग्स और एफडी पे इंटरेस्ट बिग, ब्रांच नेटवर्क बिग. अगर स्मॉल होता तो मैं साइड में होता. जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस.
3: The world is changing. The headlines are shifting. The future is being written every day. From around the continents, Asia and India, WeOn brings you the stories that shape our world. Grounded, geopolitical, global. WeOn. World is one.
4: यार लोन भूल गया
5: मैडी.
4: जस्ट अ गुड बैंक ना.
2: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक.
4: स्मॉल फाइनेंस बैंक.
2: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, माइक्रो मॉर्गेज लोन, गोल्ड लोन, प्री ओन कार लोन, टू व्हीलर लोन.
4: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
2: अस. उज्जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस.

0: 25 years ago, Prime Minister Narendra Modi took charge as the Gujarat's then Chief Minister. What followed later was a rapid industrial expansion, and pharmaceuticals became one of the state's most powerful growth engines. Today, Gujarat's healthcare story is no longer limited to making only medicines. It has become about pharma, bulk drugs, biotechnology, medical devices, and specialized hospitals. Gujarat today is building something much bigger, an entire healthcare ecosystem.
1: India is the largest provider of generic drugs globally and is renowned for its affordable vaccines and high-quality medicines. Over the years, the Indian pharmaceutical industry has evolved into a vibrant sector, currently the third largest in the world by volume. If one looks at India's pharmaceutical growth story, one name comes to the top, and that is Gujarat. From bustling industrial zones to world-class manufacturing plants, Gujarat has earned a reputation as India's pharmaceutical powerhouse. Gujarat is home to more than 3,300 pharmaceutical manufacturing units spread across major industrial clusters like Ahmedabad, Vadodara, Vapi, Bharuch and Ankleshwar. Historical industry data puts Gujarat's contribution at around 30-35% of India's pharma sector turnover and around 28% of pharmaceutical exports. But the strength of Gujarat's pharma sector goes beyond the number of factories. Over the years, an entire ecosystem has grown around them, from suppliers and laboratories to packaging, logistics and skilled manpower. That ecosystem has helped companies manufacture at scale and reach international markets. And one such company is Relax Biotech. Relax Biotech began operations in Vadodara, Gujarat in 2015. Today, it manufactures around 50 crore or 500 million medicines every year. The company exports to several African countries and records annual revenue of more than 75 crore rupees or $7.88 million. Its growth reflects the wider ecosystem that has developed around Gujarat's pharmaceutical industry.
2: अपने 25 साल की बात करें तो जर्नी की बात करें तो जो मार्केट भारत में था वो विदेश का भी था और भारत का भी था, तो दोनों को कैटर करने की क्षमता जो कोई रखता था तो वो भारत ही था। और उसमें जो बढ़ोतरी हुई उसका मेन रीजन ये है, गवर्नमेंट के द्वारा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, फिर लाइसेंसिंग फैसिलिटी और स्किल्ड मेन पावर और लेबर की जो अपनी पूर्तता है वो समय समय पे हमें मिलती रहती है। आप बड़ौदा की बात करें या गुजरात की बात करें तो बड़ौदा में, गुजरात में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में गवर्नमेंट ने पहले दिन से फोकस किया था और इंडस्ट्री को उसके कारण जो भी सपोर्ट मिला है तो वो अपने को ये बेनिफिट आज की तारीख में भी मिल रहा है।
1: गुजरात हेल्थ केयर स्टोरी इज नो लॉन्गर ओनली अबाउट व्हाट कम्स आउट ऑफ अ फैक्ट्री, द ट्रांसफॉर्मेशन इज इंक्रीजिंगली विजिबल इनसाइड हॉस्पिटल्स। Across cities such as Ahmedabad, Vadodara and Surat, hospitals have expanded their tech infrastructure and capabilities, from basic healthcare to advanced diagnostics, specialized surgery and technology-driven treatment. That means making fewer journeys outside Gujarat for medical treatment.
3: आप 25 साल पहले का, 20-25 साल पहले के आप स्टोरी देखोगे तो हेल्थकेयर सिस्टम की, कि पेशेंट को ट्रीटमेंट एक ही जगह पे नहीं मिलती थी। देर आर मल्टीपल ऑप्शंस उनको सिलेक्ट करना पड़ता था। अगर उनको हार्ट सर्जरी भी करनी थी या फिर कोई बड़ा सर्जरी का कोई बदलाव था तो उनको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना पड़ता था। जो अभी का जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें आप AI बेस्ड और रोबोटिक सर्जरी और कैप्सूल एंडोस्कोपी तक की भी ट्रीटमेंट अवेलेबल हो गई है। अब एक ही प्लेस पे आपको ट्रांसप्लांट सर्जरी भी हम कर सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। एक ही जगह पे, एक ही सिटी, विदिन अ सिटी आपको हर फैसिलिटी मिल रही है। पेशेंट को एक ही जगह पे सब इन्वेस्टिगेशंस और सब उसका डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट भी अवेलेबल हो गया है।
1: One doctor who has witnessed this transformation firsthand is Dr. Tarang Sharma. Dr. Sharma has been treating patients since 2008, giving him nearly two decades of experience in the field. What was once a system with limited specialized options is now a much wider network of hospitals, diagnostics, and treatment facilities. For doctors, it has meant more technology, more specialized capabilities, and increasingly, the ability to treat patients closer to where they live.
4: पहले का जो एरा था और अभी का जो है उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस आए हुए हैं. लाइक पहले को एक सिटी से लेकर दूसरे सिटी तक जाना पड़ता था. अब क्या है कि अपने ही सेंटर में, अपने ही जिले में या डिस्ट्रिक्ट में या फिर तालुका प्लेसेस पे भी वो फैसिलिटीज प्रोवाइड हो रही है. पहले उतनी मेडिकल कॉलेज नहीं थी, पहले इतने पीएचसी सीएचसी सेंटर नहीं थे. आज आप देखें तो वो पीएचसी सीएचसी सेंटर पे भी अच्छे से अच्छी सारवार ले सकते हैं. जो अपनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर और एडवांस टेक्नोलॉजी अपना रही है. तो पेशेंट के लिए बहुत सारा बेनिफिट हुआ है कि वो अपने नियर बाय एरिया में ही ट्रीटमेंट ले सकते हैं. बात करें एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, स्किल डेवलपमेंट ऑफ एचआर मैन पावर, वो सब बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ किया हुआ है. हम बात करें अब के एरा में टेलीमेडिसिन, जो हमने कोविड में भी देखा और आज भी देख रहे हैं कि हम यहाँ से लेके बड़ौदा, हम अभी बड़ौदा में है तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई सभी जगह पे टेलीमेडिसिन से डॉक्टर से डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते थे.
1: The transformation is also visible inside the operating room. Gujarat is revolutionizing healthcare with robotic surgeries, ensuring greater precision, quicker recovery, and fewer complications. Cath labs have also enabled advanced cardiac interventions. Once limited to a few hospitals, these advanced procedures are now accessible to the public. Gujarat is now looking beyond conventional healthcare setup. The next opportunity lies at the intersection of pharmaceuticals, biotechnology and technology. Artificial intelligence, robotics, medical devices, advanced diagnostics, digital health, research. The ambition is to move from manufacturing healthcare products to developing technologies that can shape healthcare itself. The focus is increasingly on biotechnology, medical devices, innovation and research, alongside the state's existing pharmaceutical base. The challenge now is to bring these pieces together and create a deeper ecosystem for healthcare innovation.
2: इसका सबसे जरूरी जो aspect है वो है कि skill labor चाहिए. तो वो skill labor provide तो बड़ौदा के अंदर ही चार बड़ी university आज की तारीख में है, और जिसके अंदर pharmaceutical के लिए जो भी B-Pharm कोर्सेस है वो चलते हैं. और हमें यहाँ से लोकली भी एजुकेशन के हिसाब से मेन पावर मिल रहा है. तो ये एक सपोर्टिंग, सबसे बड़ा सपोर्ट है. साथ में गवर्नमेंट हमें इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल जोन में जो भी बेसिक सुविधा है वो हमें सिंगल विंडो से देने को ट्राई कर रही है, जिसके कारण गुजरात की जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री थी उसने अपने एक्सपेंशन को भी किया. और दूसरी जो बाहर की कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है या गुजरात के बाहर की है, वो भी कंपनी इधर आके यहाँ पर अपना यूनिट अलग से करके प्रोडक्शन में बढ़ोतरी कर रही है.
1: For 25 years, Gujarat built scale. First in the manufacturing of medicines, then in infrastructure, hospitals and specialized care. Now, the ambition is to build what comes next. An ecosystem where medicines, medical devices, biotech, data and technology all come together. The test will be whether Gujarat can turn that scale into innovation and make healthcare not just more advanced, but more accessible and affordable for one and all.
0: Because the story may not just be about what the state makes, but about what it can invent, develop and take to the world. Quick video journalist Siddesh, this is the show reporting from Vadodara, Gujarat for Beyond World is One.

0: गाइस मेरा तीसरा स्टोर. अब एक्सपेंशन के लिए ना एक बैंक चाहिए. एनी सजेशंस? जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक. स्मॉल
1: स्मॉल.
2: अब पूरी पिक्चर देख लो.
3: लोन ऑप्शंस बिग.
4: सेविंग्स और एफडी पे इंटरेस्ट बिग.
3: ब्रांच नेटवर्क बिग.
2: अगर स्मॉल होता तो मैं एसआर में होता.
3: जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस.
5: The world is changing. The headlines are shifting. The future is being written every day. From around the continents, Asia and India, WEON brings you the stories that shape our world. Grounded, geopolitical, global. WEON. World is one.
6: यार लोन भूल गया मैरी.
7: Suggest a good bank na.
2: Ujjivan Small Finance Bank.
7: Small Finance Bank.
2: Small. Working capital loan, home loan, loan against property, micro mortgage loan, gold loan, pre-owned car loan, two-wheeler loan.
8: There's nothing small about it.
3: Ujjivan, nothing small about us.

0: Welcome back. You're watching We On World is One. I'm Shivan Chandna. Let's start with the headlines.
1: और भारत के कैप्टन स्मिथ ने 9/11 होने से बचा लिया.

0: Maddie, I need to open a savings account.
1: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो.
0: स्मॉल बैंक.
1: स्मॉल. Privilege savings account, Garima savings account, Maxima business edge current account, business Maxima business privilege RDF. There's nothing small about them.
0: Okay.
1: Ujjivan, nothing small about us.
2: The world is changing. The headlines are shifting. The future is being written every day. From around the continents, Asia and India, WEON brings you the stories that shape our world. Grounded, geopolitical, global. WEON. World is one.
3: यार लोन भूल गया
4: मैडी.
3: इट्स जस्ट अ गुड बैंक ना.
1: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक.
3: स्मॉल फाइनेंस बैंक.
1: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, माइक्रो मॉर्गेज लोन, गोल्ड लोन, प्री ओन कार लोन, टू व्हीलर लोन.
5: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
1: अस. उज्जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस.

0: मैडी, आई नीड टू ओपन अ सेविंग्स अकाउंट.
1: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो.
0: स्मॉल बैंक,
1: स्मॉल प्रिविलेज सेविंग्स अकाउंट, गरिमा सेविंग्स अकाउंट, मैक्सिमा बिजनेस एज करंट अकाउंट, बिजनेस मैक्सिमा बिजनेस प्रिविलेज आरडीए, देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट देम.
0: ओके
1: उज्जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस.
2: द वर्ल्ड इज चेंजिंग, द हेडलाइंस आर शिफ्टिंग, द फ्यूचर इज बीइंग रिटन एवरी डे. From around the continents, Asia and India, WEON brings you the stories that shape our world. Grounded, geopolitical, global. WEON, world is one.
3: यार लोन भूल गया मैडी.
1: जस्ट अ गुड बैंक ना. उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक.
3: स्मॉल फाइनेंस बैंक.
1: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, माइक्रो मॉर्गेज लोन, गोल्ड लोन, प्री ओन कार लोन, टू व्हीलर लोन.
4: There's nothing small about it.
1: Oh, Jeevan, nothing small about us.

0: Maddie, I need to open a savings account.
1: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो.
0: स्मॉल बैंक
1: स्मॉल प्रिविलेज सेविंग्स अकाउंट गरिमा सेविंग्स अकाउंट मैक्सिमा बिजनेस एच करंट अकाउंट बिजनेस मैक्सिमा बिजनेस प्रिविलेज आरडीएफ देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट देम.
0: ओके
1: उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस.
2: द वर्ल्ड इज चेंजिंग. द हेडलाइंस आर शिफ्टिंग. द फ्यूचर इज बीइंग रिटन एवरी डे. From around the continents, Asia and India, WEON brings you the stories that shape our world. Grounded, geopolitical, global. WEON. World is one.
3: Yaar, loan bhool gaya. Maddie? It's just a good bank, na?
1: Ujjivan Small Finance Bank.
3: Small Finance Bank?
1: Small. Working capital loan, home loan, loan against property, micro mortgage loan, gold loan, pre-owned car loan, two-wheeler loan.
4: There's nothing small about it.
1: Oh, Jeevan, nothing small about us.

0: Maddie, I need to open a savings account.
1: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो.
0: स्मॉल बैंक
1: स्मॉल privilege savings account, Garima savings account, Maxima business edge current account, business Maxima business privilege RD, there's nothing small about them.
0: Okay.
1: Ujjivan, nothing small about us.
2: The world is changing. The headlines are shifting. The future is being written every day. From around the continents, Asia and India, WEON brings you the stories that shape our world. Grounded, geopolitical, global. We on. World is one.
3: यार लोन भूल गया
4: मैडी.
3: इट्स जस्ट अ गुड बैंक ना.
1: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक.
3: स्मॉल फाइनेंस बैंक.
1: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, माइक्रो मॉर्गेज लोन, गोल्ड लोन, प्री ओन कार लोन, टू व्हीलर लोन.
5: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
1: अस. उज्जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस.

0: Maddie, I need to open a savings account.
1: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो.
0: स्मॉल बैंक
1: स्मॉल प्रिविलेज सेविंग्स अकाउंट गरिमा सेविंग्स अकाउंट मैक्सिमा बिजनेस एच करंट अकाउंट बिजनेस मैक्सिमा बिजनेस प्रिविलेज आरडीएफ देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट देम.
0: ओके
1: उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस.
2: द वर्ल्ड इज चेंजिंग. द हेडलाइंस आर शिफ्टिंग. द फ्यूचर इज बीइंग रिटन एवरी डे. From around the continents, Asia and India, WEON brings you the stories that shape our world. Grounded, geopolitical, global. WEON. World is one.
0: Guys, mera teesra store. Ab expansion ke liye na ek bank chahiye. Any suggestions? Ujjivan Small Finance Bank. Small?
3: Small? Ab puri picture dekh lo. Loan options, big. Savings or FDP interest, big. Branch network, big.
1: Agar small hota, to main shahar mein hota. Ujjivan, nothing small about us.

0: Maddie, I need to open a savings account.
1: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो.
0: स्मॉल बैंक
1: स्मॉल प्रिविलेज सेविंग्स अकाउंट गरिमा सेविंग्स अकाउंट मैक्सिमा बिजनेस एज करंट अकाउंट बिजनेस मैक्सिमा बिजनेस प्रिविलेज आरडीएफ देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट देम.
0: ओके
1: उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस.
2: द वर्ल्ड इज चेंजिंग. द हेडलाइंस आर शिफ्टिंग. द फ्यूचर इज बीइंग रिटन एवरी डे. From around the continents, Asia and India, WEON brings you the stories that shape our world. Grounded, geopolitical, global. WEON. World is one.
0: Guys, mera teesra store. Ab expansion ke liye na ek bank chahiye. Any suggestions? Ujjivan Small Finance Bank. Small?
1: Small? Ab puri picture dekh lo. Loan options, big. Savings or FDP interest? Big. Branch network?

0: in Gujarat has spent decades mastering one thing, turning rough stones into some of the world's most sought-after diamonds. But the ambition today is much bigger, to manufacture, trade, design, and eventually take more of that value to the global consumer. As Prime Minister Narendra Modi completes 25 years in public life this October, we look at the transformation of Gujarat's diamond ecosystem from family-run workshops to a global trading hub.
1: In 1972, Vallabhbhai Borda began learning the diamond trade. 15 years later, in 1987, he started his own business setup with two family members and just three employees. Today, along with his son, that business has grown to more than 4,000 people across Gujarat. This is the story of Anjali Diam, a natural diamond manufacturing company that has grown with Surat's diamond industry.
2: जब हमने स्टार्ट किया था तब हम दो तो हम खुद थे, एक मैं और एक मेरा भतीजा परेश थे, और तीन कारीगर गांव में से मिली, हमने गांव में से फैक्ट्री स्टार्ट की थी। तो हम दो थे, तीन मिल गए, बोले पांच मिल के फैक्ट्री चल जाएगी। उस टाइम वर्कर की बहुत कमी थी, डायमंड वर्कर को अच्छा रिस्पेक्ट देते थे सब, और उसको एडवांस में पैसा देना पड़ता था। उस टाइम पहले इन्वेस्ट वर्कर में करना पड़ता था, टेक्नोलॉजी नहीं थी तो प्रोडक्शन बहुत कम आते थे। फिर धीरे धीरे पहले देसी घंटी थी, फिर सेमी घंटी आई, ऑटोमेटिक घंटी आई, तो फिर डायमंड स्केप शरण आई, तो उसका प्रोडक्शन 10 गुना बढ़ गया पहले से। टेक्नोलॉजी के बिना ही धंधा चल नहीं सकता, कंप्यूटराइज सब हो गया। अगर पुराने तरीके से धंधा करने जाओ तो कोई कर ही नहीं सकेगा, कल्पना भी नहीं कर सकेगा अभी तो।
1: Today, the company has grown by leaps and bounds. Surat in Gujarat cuts and polishes about 90% of all rough diamonds in the world by volume. An industry compendium associated with the Surat Diamond Bourse puts the city's diamond ecosystem at nearly 7 lakh people and more than 6,000 units. At Anjali Diam alone, the company estimates around 35,000 rough diamonds are cut and polished every day. But as the industry has grown, so have consumer expectations.
3: Previously, in the previous generation, the buyers, they were just interested in knowing what is the color clarity or the size, and they were only interested in knowing the value of the diamonds. But the newer generation, they want to know everything. They want to know where did this diamond come from, which mines. They want to know the policies of the diamonds. They also want to know the policy of ours, how, what are our social commitments, what corporate social responsibilities we are doing. We are doing everything responsibility or not. They want to know everything. If we are doing anything, if we are harming the environment or we are doing something to protect the environment or not.
1: The industry's biggest shift has been technological. Advanced diamond planning, laser cutting and automation have made the process faster and more precise. And this change has unfolded alongside Gujarat's broader economic expansion.
4: Last 25 saal ke andar jo changes hua hai, wo jyada se jyada technology mein hua. 25 साल पहले ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी जो एक पूरे सूरत के अंदर कटिंग पॉलिशिंग हो रहा था, नए नए लोग माइग्रेट होकर सूरत आ रहे थे और डायमंड इंडस्ट्रीज ग्रो हो रही थी। 25 साल के बाद जैसे टेक्नोलॉजी अडॉप्शन सूरत ने पहले किया, जो वर्ल्ड के इजराइल की जो टेक्नोलॉजी है, कटिंग पॉलिशिंग, डायमंड प्लानिंग वगैरह, लेजर टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी से डायमंड इंडस्ट्रीज को एक बूस्ट मिला है। और जब से नरेंद्र मोदी जी यहाँ मुख्यमंत्री बने थे, उस टाइप से बहुत सारा गुजरात के अंदर चेंजेस आए। उसने डिसीजन बहुत बोल्ड डिसीजन लिया। मोदी साहब ने एक डायमंड इंडस्ट्रीज की बात करूं तो डायमंड इंडस्ट्रीज में अच्छे से मतलब यहाँ इंडस्ट्रीज को ग्रो होने के लिए उसने वाइब्रेंट गुजरात स्टार्ट किया, जो गुजरात में जो बाहर से ऑल ओवर वर्ल्ड से लोगों को यहाँ इन्वेस्टमेंट करने का प्लान किया। उसमें जेम्सन ज्वेलरी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए उसने एक डेडिकेटेड एक एग्जीबिशन स्टार्ट करवाया और वर्ल्ड से जितने भी बायर्स है उसको सूरत लाने का प्रयास किया।
1: But Surat's importance goes beyond the number of diamonds it processes. India exported $12.16 billion worth of cut and polished diamonds in financial year 2025-26. The category accounted for 43.9% of India's total gem and jewelry export basket, despite exports falling 8.52% from the previous year. The biggest markets include the United States, Hong Kong and the UAE. So while Surat remains the world's diamond workshop, the global market itself is changing. The diamond industry predates the current political era, but its expansion has coincided with 25 years of economic and infrastructure development in Gujarat. On the 7th of October 2001, Prime Minister Narendra Modi took the oath as Gujarat Chief Minister, becoming the 14th Chief Minister of the state. He served as Gujarat CM for nearly 13 years before entering national politics. And this year, Prime Minister Narendra Modi completes 25 years of continuous public service, combining his tenure as Gujarat's Chief Minister and India's Prime Minister. Infrastructure, connectivity, industrialization and investment became central to Gujarat's economic pitch during this period. Surat has increasingly plugged into that wider network. With an international airport, port connectivity and road links to major business centers including Mumbai and Ahmedabad. The diamond industry has also driven massive futuristic urban development in Surat. This is Surat Diamond Boss or SDB. It's a diamond trade center located in the city. An infra marvel known for its sheer size and top class amenities. Spread across 6.7 million square feet, the complex has 15 floors, 9 towers and more than 4,700 diamond merchant offices, making it the world's largest diamond trading hub as well as the world's largest office building, surpassing the US Pentagon, which held the title for 80 years. A visible symbol of Surat's ambition to move beyond manufacturing.
2: ...2015 में सोचा हमारा सब व्यापारियों ने कि सूरत में एक डायमंड हब बनाए, इसमें सभी बिजनेस एक ही कैंपस में आ जाए। तो 2015 में हमने निकी किया कि यहाँ एक डायमंड बुर्स बनाने का है। लेटेस्ट जो बॉम्बे में डायमंड बुर्स अच्छा ही है, तो इसमें जो कमियां थी यहाँ सभी सुधार के एकदम लेटेस्ट वर्ल्ड का लार्जेस्ट बिल्डिंग यहाँ बना है। प्रधानमंत्री ने 2023 में इसका ओपनिंग किया है। मेन बनाने का है तो वही था कि बायर आता है तो सूरत में मैन्युफैक्चर देखने के इसको बहुत इच्छा होती है, वो इस हिसाब से हमने यहाँ डायमंड बुर्स बनाया।
1: द नेक्स्ट डिसरप्शन इज कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट डायरेक्शन फ्रॉम इनसाइड अ लेबोरेटरी लैब।

0: गाइस मेरा तीसरा स्टोर अब एक्सपेंशन के लिए ना एक बैंक चाहिए एनी सजेशंस जीवन स्मॉल फाइनेंस मैन स्मॉल
1: अब पूरी पिक्चर देख लो लोन ऑप्शंस बिग सेविंग्स और एफडी पे इंटरेस्ट बिग ब्रांच नेटवर्क बिग अगर स्मॉल होता तो मैं साइड में होता और जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस.
2: The world is changing. The headlines are shifting. The future is being written every day. From around the continents, Asia and India, WEON brings you the stories that shape our world. Grounded, geopolitical, global. WEON. World is one.
3: In West Asia, every move shifts the world's balance. Wars, ceasefires, alliances. Power never stands still. Because what happens in West Asia never stays in West Asia. This is the West Asia Post.

0: गाइस मेरा तीसरा स्टोर. अब एक्सपेंशन के लिए ना एक बैंक चाहिए. एनी सजेशंस? जीवन स्मॉल फाइनेंस मैन. स्मॉल
1: स्मॉल.
2: अब पूरी पिक्चर देख लो. लोन ऑप्शंस बिग.
1: सेविंग्स और FD पे इंटरेस्ट बिग.
2: ब्रांच नेटवर्क
1: बिग.
2: अगर स्मॉल होता तो मैं साड़ में होता. और जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस.
3: In West Asia, every move shifts the world's balance. Wars, ceasefires, alliances, power never stands still. Because what happens in West Asia never stays in West Asia. This is the West Asia Post.

0: गाइस, मेरा तीसरा स्टोर। अब एक्सपेंशन के लिए ना एक बैंक चाहिए। एनी सजेशंस? जीवन स्मॉल फाइनेंस मैन। स्मॉल
1: स्मॉल, अब पूरी पिक्चर देख लो। लोन ऑप्शंस बिग, सेविंग्स और एफडी पे इंटरेस्ट बिग, ब्रांच नेटवर्क बिग। अगर स्मॉल होता तो मैं साड़ में होता। और जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस।
2: In West Asia, every move shifts the world's balance. Wars, ceasefires, alliances. Power never stands still. Because what happens in West Asia never stays in West Asia. This is the West Asia Post.
3: The architecture of war is changing. Geography is no longer a shield. The battlefield now stretches from sea to space. Meet the veterans, industry stalwarts, and innovators.
0: Maddie, I need to open a savings account.
1: Arey, Ujjivan Small Finance Bank mein khol lo.
0: Small bank?
1: Small. Privilege savings account, Garima savings account, Maxima business, Edge current account, business, Maxima business, Privilege, RDF. There's nothing small about them.
0: Okay.
1: Ujjivan, nothing small about us.